यह दोहा सार और असार के बीच की सबसे बारीक रेखा को खींचता है। यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो जानकारी को ही ज्ञान मान बैठते हैं। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, जो वो एके ना जानिया तो जानिया सब जान। यहाँ एक का मतलब वह मूल सत्य, वह परमात्मा, वह स्वयं का बोध से तात्पर्य है। कबीर कह रहे हैं कि अगर तुमने उस एक को जान लिया तो समझो तुमने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वह एक ही है जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। अगली पंक्ति में वे चेतावनी देते हैं, जो वो एके ना जानिया तो सभी जान अजान। अगर तुमने दुनिया भर की डिग्रियां ले ली, हजारों किताबें रट ली, पर उस एक स्वयं को या उस परम तत्व को नहीं जाना, तो तुम्हारा सारा ज्ञान अज्ञान के बराबर है। तुम अजान यानी अनजान ही रह गए। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जैसे गणित में जीरो की अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर उसके आगे एक लग जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अगर वह एक नहीं है तो आप चाहे जितना जीरो लगा लें, कुछ जमा शून्य ही रहेगा। हमारी जिंदगी की जानकारियां भी उस जीरो जैसी ही हैं। जब तक उनमें आत्मीय ज्ञान का एक नहीं जुड़ता, तब तक वे सब बेमानी हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी जानकारी की पोटली को टटोलिए। हम दूसरों के बारे में सब जानते हैं, राजनीति और बाजार के बारे में सब जानते हैं, पर क्या हमने अपने भीतर के बारे में कुछ जानते हैं? क्या हमने उस एक शांति को महसूस किया जो हमारे होने का आधार है? आज कोशिश कीजिए सारी सूचनाओं के शोर को किनारे रखकर उस एक सत्य की ओर मुड़ने की। वह सत्य जो किताबों में नहीं, आपके अपने अनुभव में मिलेगा। याद रखिए, बहुत कुछ जान लेना विद्वत्ता हो सकती है, लेकिन उस एक को जान लेना बुद्धत्व है। चुनाव आपका है कि आप सिर्फ जानकार बनना चाहते हैं या वास्तव में ज्ञानी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.

0: क्या गोली चलाई? अंदर से आवाज आई।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: देगी एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा
2: जा।

अल्लाह क्या परवाज है, क्या रवानी है, क्या बेपनाह शेर कहा है, बखुदा जादू है जा।

0: ओ, ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

0: हाय, मी आरती स्वरा. आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 एफएम, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ. एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.

सात समंदर और सरहदों के पार दूर देश सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए मेरे प्यारे दोस्तों के लिए पेशे खिदमत है एक नज़म। इस नज़म के शायर हैं जनाब आनंद बख्शी, और नज़म से पहले एक दोहा जनाब निदा फाजली का।

पटकन बटकन दही चटाकन चू चू भो भो म्याओ। एक पहेली बड़े मजे की पूछूं तुम बत

0: का स्पेशल इनाम।
1: हम इस लड़की से बेजार हो गए। ये लड़की घर से बार बार भाग जाती।
2: अब हमारे पास पैसा नहीं ला, तुम इसको शादी बना के लेके जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल इनाम।
1: लंबू
2: जी।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: श्रोते हो रेडिओ मन भवन 90.8 FM घेऊन येत आहे खास फोन इन कार्यक्रम हॅलो मन भवन. एक खास संधी तुमचं आवडतं गाणं सांगण्याची आणि तेही थेट रेडिओवर. तुमच्या मनातलं कुठलंही गाणं, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा. दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433. तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत फक्त रेडिओ मन भवन 90.8 FM वर. ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: एपिसोड 54. नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, आज का दौर सूचनाओं का दौर है. हमारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, हजारों टीवी चैनल्स हैं. हमें सब पता है दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, चांद पर क्या है और भविष्य की तकनीक क्या होगी. हम खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगे हैं क्योंकि हमारी उंगलियों पर सारी जानकारी नाचती हैं. लेकिन कबीर साहब आज हमसे एक बहुत ही सीधा और चुभता हुआ सवाल पूछ रहे हैं. वे कह रहे हैं कि भाई, तुमने सब कुछ जान लिया, पूरी दुनिया का हिसाब रख लिया, पर क्या उस एक को जाना जिसके बिना यह सब मिट्टी है. आज का दोहा हमें असली ज्ञान और बाहरी जानकारी के बीच का अंतर समझाएगा. आइए जानते हैं उस एक की कीमत क्या है. जो वो एके ना जानिया तो जानिया सब जान, जो वो एके ना जानिया तो सब ही जान अजान.

0: यह दोहा सार और असार के बीच की सबसे बारीक रेखा को खींचता है। यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो जानकारी को ही ज्ञान मान बैठते हैं। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, जो वो एके ना जानिया तो जानिया सब जान। यहाँ एक का मतलब वह मूल सत्य, वह परमात्मा, वह स्वयं का बोध से तात्पर्य है। कबीर कह रहे हैं कि अगर तुमने उस एक को जान लिया तो समझो तुमने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वह एक ही है जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। अगली पंक्ति में वे चेतावनी देते हैं, जो वो एक ना जानिया तो सभी जान अजान। अगर तुमने दुनिया भर की डिग्रियां ले ली, हजारों किताबें रट ली, पर उस एक स्वयं को या उस परम तत्व को नहीं जाना, तो तुम्हारा सारा ज्ञान अज्ञान के बराबर है। तुम अजान यानी अनजान ही रह गए। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जैसे गणित में जीरो की अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर उसके आगे एक लग जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अगर वह एक नहीं है तो आप चाहे जितना जीरो लगा लें, कुछ जमा शून्य ही रहेगा। हमारी जिंदगी की जानकारियां भी उस जीरो जैसी ही हैं। जब तक उनमें आत्मीय ज्ञान का एक नहीं जुड़ता, तब तक वे सब बेमानी हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी जानकारी की पोटली को टटोलिए। हम दूसरों के बारे में सब जानते हैं, राजनीति और बाजार के बारे में सब जानते हैं, पर क्या हमने अपने भीतर के बारे में कुछ जानते हैं? क्या हमने उस एक शांति को महसूस किया जो हमारे होने का आधार है? आज कोशिश कीजिए सारी सूचनाओं के शोर को किनारे रखकर उस एक सत्य की ओर मुड़ने की। वह सत्य जो किताबों में नहीं, आपके अपने अनुभव में मिलेगा। याद रखिए, बहुत कुछ जान लेना विद्वत्ता हो सकती है, लेकिन उस एक को जान लेना बुद्धत्व है। चुनाव आपका है कि आप सिर्फ जानकार बनना चाहते हैं या वास्तव में ज्ञानी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching.

0: केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: जाने वो कैसे

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: पल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ट्यून इन एनी वेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

0: या तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।

मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के।

बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू न

हिंदुस्तान का मेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: लो
1: वह दर्शन दीक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन गिरधर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन गिरधर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन गिरधर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन गिरधर हरिओ

निराश न हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह है ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

यह गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार, दोनों मिल मिल छेड़े तार। बोलत है बरखाती रिंझ गाओ गौड़ मल्हार।

यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह भाग्यश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निपदार।

0: वाह उस्ताद वाह उस्ताद क्या जान लेवा तान है वाह जियो
1: ओ देना दे दाने दे तनो ओ देना दे दाने दे तनो ना ना दे दाने दा दा दे तनो दे तनो दे तनो तनो ओ देना दे दाने यो देना दे दा

0: की एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा।

0: है ये बेअदब कनीज़ो।
1: बेअदब जरूर है लेकिन शेर अच्छा कहा है। खातून आ गया। माँ बदौलत ने अब तक सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत शेर सुना है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कौन हो तुम?
0: आपकी कनीस अर्जुमन बानो।
1: अर्जुमन बानो? आसिफ खान की साहिबजादी, मिर्जा कयास की पोती। सुभान अल्लाह, ई खाना हम आफ्तावस। हमने तो समझा था इस बहरे हुसन का सबसे चमकदार मोती हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे दुरे नायाब मौजूद है। अर्जुमन, तुमने एक शेर पढ़कर हमारी आतिश शौक को भड़का दिया है, हम पूरी गजल सुनना चाहते हैं। बैठ जाओ।
0: क्यों हुक्म आली जाने।

कहा, क्या परवाज है, क्या रवानी है, क्या बेपनाह शेर कहा है, बखुदा जादू है जा।

0: ओ, ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात